सुप्रभातम बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्योदय हुआ है 5:55 पर और सूर्यास्त होगा 6:54 पर।

कलकत्ता में यकीन रखने वाले बलिदानी महापुरुषों ने संसार में चारों तरफ फैली नफरत की आंधी को हटाकर मानवता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। संसार बटा हुआ है, यह बिखराव में है, इसे एकजुट और जागरूक करके मानव एकता कायम करने वाले संतों भक्तों ने महान बलिदान दिए हैं। उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए ही मानव एकता दिवस का आयोजन किया जाता है।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 7। आज किडनी बातचीत करेंगे आज के आमंत्रित मेहमान श्रीमती नीरजा बख्शी के साथ। रिकॉर्ड एवं एडिट किया भारत सोपुरी ने, सहयोग कृष्णा का, स्क्रिप्ट एवं निर्देशन आरजे किडनी।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता 90.0 FM और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किडनी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम घर परिवार में, जहां बात होती है रिश्तों की, एहसासात की और उन अनमोल बंधनों की जो हमारी जिंदगी को मायने देते हैं। कहते हैं घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है प्यार से, अपनापन से और रिश्तों की गर्माहट से। और आज का हमारा विषय है बहनों का प्यारा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती भी है, ममता भी है और सुकून भी। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कई खूबसूरत रिश्तों की पहचान है। एक समर्पित होममेकर, एक स्नेहमय माँ और एक संवेदनशील बहन। घर की जिम्मेदारियों को मुस्कुराकर निभाना, बच्चों के लिए छांव बन जाना और रिश्तों को धागे की तरह सहेज कर रखना, ये हुनर हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन जो आज हमारी गेस्ट है उनके पास ये सारे हुनर है। इन सभी भूमिकाओं को उसने सिर्फ निभाया नहीं बल्कि खूबसूरती से जिया है। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम घर परिवार में।
2: रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीरजा बख्शी, मैं जम्मू से हूँ। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और जम्मू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की है।
1: आपका हमारे घर परिवार कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। बहनों के इस खास विषय पर आपके अनुभव और आपके एहसास सुनने के लिए हम सब बेहद उत्सुक हैं। घर की दीवारों में जो खुशबू ठहर जाती है वो अक्सर किसी औरत की ममता कहलाती है। रिश्तों को जो चुपचाप सींचती रहती है वही घर की असली ताकत बन जाती है। निर्जा जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ। अक्सर कहा जाता है कि बहनें एक दूसरे की रूह का हिस्सा होती है, आपके हिसाब से इस बात का असली मतलब क्या है? क्या सच में बहनों के बीच एक ऐसा एहसास और जुड़ाव होता है जो शब्दों से परे होता है?
2: जी हाँ किरणी जी, वाकई में बहनें एक दूसरे की रूह का हिस्सा होती है। वो न सिर्फ साथ में खेलती कूदती हैं, बल्कि वो साथ में खाती पीती हैं, उठती बैठती हैं, हर छोटा बड़ा काम भी करती हैं। इसके अलावा वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती भी हैं, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा होता है, उनकी आपस की लड़ाई उनको याद नहीं रहती और ना ही उनको एक दूसरे के खिलौने छीनने से फर्क पड़ता है। ये ऐसा प्यार है जो बिना किसी मतलब के एक दूसरे से किया जाता है। ये ऐसा प्यार होता है जहाँ माँ की डांट से एक दूसरे को बचाया भी जाता है।
1: निर्जा जी, आपने सही कहा, बहन का रिश्ता शब्दों से नहीं एहसासों से समझा जाता है, शायद इसलिए ये रूह से जुड़ा हुआ लगता है। आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है, बचपन में बहन का साथ हमारे स्वभाव, आदतों और सोच को किस तरह आकार देता है? क्या वही बचपन की यादें आज भी इस रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बनी हुई है?
2: बचपन में बहन ही सबसे ज्यादा करीब होती है, उसी के साथ खिलौने, कपड़े, जगह सब कुछ शेयर होता है और वही छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह बनती है, पर ये लड़ाइयाँ कभी दूर नहीं करती।
1: आपने सही कहा, बचपन की वही छोटी छोटी बातें बड़े होकर भी रिश्ते को सबसे मजबूत डोर बन जाती है। अब आपसे मेरा अगला प्रश्न है, लोग कहते हैं कि बहन का रिश्ता दोस्ती से भी ज्यादा गहरा होता है, आपके अनुसार इस रिश्ते की वो कौन सी बात है जो इसे हर रिश्ते से अलग और खास बनाती है?
2: किरणी जी, आप जानती हैं, दोस्त हम जिंदगी में बाद में बनाते हैं, पर बहन बचपन से साथ होती है। दोस्त को हम अपनी कहानी बताते हैं, लेकिन बहन पहले से ही उस कहानी का हिस्सा होती है। दोस्त कभी कभी समझता है, पर बहन बिना समझाए सब कुछ समझ जाती है। दोनों खास होते हैं, लेकिन बहन का रिश्ता ज्यादा गहरा और पुराना होता है।
1: सच कहा, दोस्ती अपनी जगह है लेकिन बहन का रिश्ता जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और गहरा होता है। दोनों रिश्ते हमारी जिंदगी में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। आपसे मेरा अगला प्रश्न है, जिंदगी की मुश्किल घड़ियों, उलझनों और चुनौतियों में बहन की मौजूदगी क्या मायने रखती है? क्या वो सचमुच में एक ऐसे सहारे की तरह होती है जो बिना कहे समझ ले?
2: आप जानती हैं, जिंदगी में हर इंसान को किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसके साथ वो अपने दिल की बात बता सके, जिसके साथ वो अपनी सीक्रेट शेयर कर सके और जिस पर वो भरोसा कर सके। इसी तरह बहन के साथ सीक्रेट शेयर करना भरोसे को मजबूत करता है। जब आप अपनी बात बिना डर के कह सकते हैं, रिश्ता गहरा होता है। ये सीक्रेट्स सिर्फ बातें नहीं, एक दूसरे का भरोसा होती हैं। इसी भरोसे से बहन का रिश्ता मजबूत होता है। अब बात है मुश्किलों की। जब दुनिया समझ नहीं पाती, बहन बिना समझाए समझ लेती है। वो बस पास बैठकर भी हिम्मत देती है, कभी शब्दों से, कभी सिर्फ अपनी मौजूदगी से। मुश्किल वक्त में बहन सबसे बड़ा सहारा बनती है।
1: आपने सही कहा, मुश्किल वक्त में बहन का साथ सच में एक हिम्मत जैसा होता है जो संभाल भी लेता है और समझ भी लेता है। मेरा आपसे अगला प्रश्न है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बड़ी बहन बहुत केयरिंग होने के साथ साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हो जाती है। क्या आपको लगता है कि सख्ती के पीछे भी छुपा हुआ गहरा प्यार और जिम्मेदारी होती है?
2: जी हाँ, असल में बात यह है कि स्ट्रिक्टनेस और प्यार, ये दो चीजें अलग है। स्ट्रिक्टनेस इंसान को गलतियां करने से बचाती है और प्यार इंसान को एक दूसरे पर भरोसा करवाती है। बड़ी बहन शायद स्ट्रिक्ट इसलिए होती है क्योंकि उसको घर में जिम्मेदारी का एहसास बचपन में ही पैदा हुआ होता है। वो माँ की तरह हर बात पर नजर रखती है, पर बहन की तरह प्यार भी करती है। उसकी डांट में सख्ती कम, चिंता ज्यादा होती है। बड़ी बहन घर की वो छाया होती है जो बिना कहे सब संभालते रहना चाहती है। कभी टीचर बन जाती है, कभी दोस्त और कभी माँ का रूप ले लेती है। केयरिंग होना उसके दिल की नरमी का एहसास है और स्ट्रिक होना उसकी फिक्र का तरीका है।
1: आपने बहुत सही कहा, बड़ी बहन की सख्ती में भी एक अजीब सी मिठास होती है क्योंकि उसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। नीरजा जी, बहुत प्यार भरी बातें हुई, क्या आप संगीत सुनते हैं?
2: जी हाँ, मैं संगीत सुनती हूँ और संगीत से ही तो रूह को सुकून मिलता है।
1: तो फिर चलिए, आप अपना पसंदीदा गीत बताइए।
2: मेरा पसंदीदा गीत है अपने तो अपने ही होते हैं।
1: तो चलिए सुनाते हैं आपका पसंदीदा गीत, आपको और अपने श्रोताओं को।

0: आपसे मेरा एक और प्रश्न है। अक्सर देखा जाता है कि छोटी बहन बड़ी बहन की बात मानती है, उस पर भरोसा करती है और उसे एक मिसाल की तरह देखती है। इस आज्ञाकारिता के पीछे कौन सा भाव काम करता है?
1: किरणी जी, अक्सर देखा जाता है छोटी बहन शुरू से ही, बचपन से ही माँ के बाद अपनी बड़ी बहन को देखती है। वो हर काम अपनी बहन की निगरानी में करती है, हर छोटी बड़ी जिद अपनी बहन के सामने पूरी करती है। इसीलिए उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बहन कभी उसके लिए गलत नहीं सोचेगी, कभी उसके लिए गलत नहीं करेगी और ना ही कभी उसको गलत रास्ता दिखाएगी। यही कारण है कि छोटी बहन अक्सर आज्ञाकारी होती है। बचपन से ही बड़ी बहन को एक मार्गदर्शक की तरह देखती है। उससे लगता है कि वे कह रही है तो यही सच है और उसमें ही उसकी भलाई है। छोटी बहन बहस भी इसीलिए कम करती है क्योंकि उसके दिल में अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा भरोसा होता है। इसीलिए उसका आज्ञाकारी होना, बहन के लिए दिल में इज्जत होना और बहन पर विश्वास होना स्वाभाविक है।
0: आपने सही कहा, क्योंकि छोटी बहन का विश्वास ही इस रिश्ते को और खूबसूरत बना देता है। अब आपसे जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है, कई बार ऐसा महसूस होता है कि बड़ी बहन बहन कम और माँ ज्यादा लगती है, किन बातों में वो माँ जैसी भूमिका निभाती हुई नजर आती है?
1: किरणी जी, आप जानती हैं, बच्चा जब छोटा होता है उसको सही गलत का अंदाजा नहीं होता और माँ अपने दूसरे कामों में व्यस्त होती है और बड़ी बहन अपना हक और अपना फर्ज बखूबी निभाती है। यही वजह है जब बड़ी बहन अपने छोटों को उनकी गलती बताती है और उनको गलत रास्ते पर चलने से रोकती है, तब बड़ी बहन में माँ की झलक दिखाई देती है। वो अगर डांटती भी है लेकिन वो साथ में संभालती भी है। वो अगर उसको कुछ गलत करते देखती है, वो उसको बिल्कुल उससे बताए बिना ही उसको उस गलती से दूर कर देती है। माँ की तरह जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है तो उसे लगता है कि शायद मेरी माँ भी इतने अच्छे से मुझे नहीं संभाल पाती। जब माँ पास ना हो तो बड़ी बहन ही संभालती है और जरूरत पड़ने पर माँ का रूप ले लेती है। बिना कहे और बिना दिखाए वो एक माँ ही बन जाती है।
0: आपने बहुत सही कहा कि कई बार सच में ऐसा लगता है कि बहन बहन कम और माँ ज्यादा होती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आज के बदलते दौर, दूरियों और व्यस्त जीवन शैली के बीच भी बहनों का रिश्ता किस रूप में बना हुआ है? क्या आज भी वही अपनापन, वही जुड़ाव महसूस होता है?
1: आज के दौर में जिंदगी पहले से काफी तेज हो गई है। सब अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, फिर भी बहनों का रिश्ता वक्त की कमी से कमजोर नहीं पड़ता। रोज बात ना हो तो भी एक छोटा सा मैसेज और कॉल दिल को सुकून दे देता है। आजकल बहनें एक दूसरे की इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन गई हैं। दूर रहकर भी पास महसूस करना, यही आज के दौर की बहनों के रिश्ते की खूबसूरती है।
0: आपने सही कहा कि दूरी चाहे कितनी भी हो जाए, बहनों के बीच की नजदीकियां कभी कम नहीं होती है, क्योंकि आज के बदलते दौर में एक फोन कॉल से हमें लगता है कि हम एक दूसरे के आसपास हैं।
1: किरणी जी, मुझे कुछ पंक्तियां याद आई हैं, क्या मैं आपके लिए वो पंक्तियां बता सकती हूँ?
0: जी हाँ, क्यों नहीं।
1: मेरी पंक्तियां इस तरह हैं, किताबों के पन्नों से पाक है फितरत उसकी, हर लफ्ज में बहती है सिर्फ मोहब्बत उसकी, किरणी की लेखनी में दिखता है बहनों का दुलार, सदा सलामत रहे मेरी बहन और उसका ये निस्वार्थ प्यार, सदा सलामत रहे मेरी बहन और उसका ये निस्वार्थ प्यार।
0: बहुत बढ़िया, आपने मेरे लिए भी शायरी बोली है। ये खाली शायरी नहीं है बल्कि तेरे लफ्जों में मुझे अपनी परछाई नजर आती है। तेरी अल्फाज सिर्फ शायरी नहीं, मेरे लिए वो बचपन की यादें भी है। तू शायरी सुनाए और मैं चुप रहूं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी आवाज का हिस्सा है। शायरी तो बहाना है, असल में तो मुझे रुलाना चाहती है। शायरी तो बहाना है, असल में तो मुझे रुलाना चाहती है। तेरे लफ्ज का असर देखो, दिल को सीधा बचपन में ले जाती है।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। घर परिवार कार्यक्रम जारी है, अब हम इसके अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं। मिर्जा जी, अभी आपने जो शायरी बोली, आपने मुझे बहुत ज्यादा भावुक कर लिया। चलिए अब आगे। मिर्जा जी, घर संभालते हुए हर रोज ये सोचना पड़ता है कि परिवार को कुछ ऐसा खिलाया जाए जो सेहतमंद भी हो, टेस्टी भी हो और ज्यादा वक्त भी ना ले। ऐसा कौन सी रेसिपी है जो आप अक्सर बनाती है, जो झटपट तैयार होती है और पौष्टिक भी होती है?
1: मैं अक्सर वेजिटेबल ओट्स चिल्ला बनाती हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है और बनाने में भी आसान है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स, ओट्स का पाउडर, 2 चम्मच बेसन, 2 से 3 चम्मच दही, बारीक कटी हुई गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और हरा धनिया। स्वाद अनुसार इसमें नमक चाहिए, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा अदरक। थोड़ा पानी डाल के इसका गोला बनाना है, फिर सब चीजों को मिलाकर डोसा जैसा गोला बना लेना है। गर्म तवे पर हल्का सा तेल लगाकर इस गोले को फैला देना है। दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेक लेना है। इससे दही या हरी चटनी के साथ गरम गरम खाने का स्वाद कुछ अलग ही आता है।
0: बहुत बढ़िया है ये रेसिपी, वाकई एक तो हेल्दी भी है और झटपट बनने वाली भी। आगे मिर्जा जी, बदलते मौसम में अक्सर सर्दी, खांसी और सोर थ्रोट की परेशानी हो जाती है। घर संभालते हुए आप जरूर कोई ऐसा घरेलू नुस्खा अपनाती होंगी जो आसान भी हो और असरदार भी। हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएंगी जो तुरंत राहत दे सके?
1: मैं अक्सर हल्दी और शहद का नुस्खा इस्तेमाल करती हूँ, जो सर्दी, खांसी और गले की खराश में काफी राहत देता है। इसको बनाने के लिए आपको 1 चम्मच शहद चाहिए और 1/4 चम्मच हल्दी चाहिए। इन दोनों को अच्छी तरह मिलाकर दिन में 2-3 बार धीरे धीरे चाट लीजिए।
0: बहुत बढ़िया। वैसे भी हल्दी में सूजन कम करने की ताकत होती है और शहद गले को नरम करती है। ये नुस्खा इम्यूनिटी बढ़ाता है और सोर थ्रोट में भी जल्दी सुकून देता है। आखिर में मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको बहन शब्द को एक खूबसूरत एहसास, एक परिभाषा या एक रूपक में डालना हो तो आप उसे किस तरह बयान करेंगी?
1: किरणी जी, मैं बहन को एक ऐसे एहसास के रूप में बयान करूंगी जो जिंदगी भर साथ चलता है। बहन वो होती है जो बचपन से आज तक आपके हर रूप को जानती है। वो डांट भी सकती है, हंसा भी सकती है और जरूरत पड़ने पर संभाल भी लेती है। पास हो या दूर, उसका प्यार हमेशा दिल के करीब रहता है। किरणी जी, मैं इसी एहसास को कुछ पंक्तियों के रूप में बयान करना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आगे बढ़ूं।
0: जरूर जरूर, आप अपनी पंक्तियाँ हमें और हमारी श्रोताओं को सुनाइए।
1: रिश्तों की भीड़ में सबसे प्यारा नाम है बहन। घर की रौनक, घर का सुकून, घर की शान है बहन। मुश्किल में जो सबसे पहले साथ खड़ी मिलती है, हर दर्द की पहली पहचान है बहन।
0: बहुत ही अच्छी लाइनें, एक तो हार्ट टचिंग है और बहुत ही सुकून देने वाली लाइनें हैं।
1: किरणी जी, मैंने आपके बहुत से सवालों का जवाब दिया। मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं आपसे वो सवाल पूछ सकती हूँ?
0: जरूर, आप अपना सवाल पूछिए।
1: किरणी जी, जिस तरह मुझे सारी उम्र अपनी बहन की एक याद मेरे दिल दिमाग में रही, क्या कोई ऐसी याद है जो आपके दिल दिमाग में भी है?
0: जी हाँ, एक ऐसी याद है जो मैं हमेशा याद करती हूँ। क्यों? कारण उसका ये भी है, क्योंकि जो मेरी बहन है वो मेरे से छोटी है, मगर छोटी होते हुए भी उसने एक बार, मतलब एक बार के कई बार, मेरा जो ध्यान रखा, जो मेरा ख्याल रखा, एक बड़ी बहन की तरह। एक बार का मुझे वाकई याद है कि मैं काफी बीमार हो गई, मुझे फीवर था, तो क्योंकि हम कश्मीर में रहते थे, वहां सर्दी बहुत थी, तो वहां ठंडा पानी तो पी नहीं सकते थे। तो उन दिनों हमारे घर में गैस नहीं थी, वो रात के 1 बजे 2 बजे उठती थी, वो चूल्हे पर गर्म पानी करती थी मेरे लिए, मुझे चाय पीनी होती थी, वो पूरी पूरी रात मेरे लिए जागती थी। वो कम से कम 4-5 दिन का समय होगा जब तक मैं ठीक होगी, वो रात को नहीं सोती थी, वो हमेशा जब तक मैं ना सोती थी वो सोती नहीं थी। और ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि कभी कभी वो छोटी होकर भी मेरी बड़ी बहन बन जाती है, और ये याद हमेशा मुझे याद आती है। जब भी मैं बीमार होती हूँ मुझे वो चीज याद आती है, वो मेरा कितना केयर करती थी। और मैं चाहती हूँ कि बहनों का प्यार ऐसा ही बना रहे और हमेशा एक मिसाल बने कि बहनें ऐसी होती है।
1: तुमने ये किस्सा सुनाकर मेरा दिल भर दिया। सच तो ये है कि तुम्हारा मेरे लिए लगाव तब भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। पर क्या तुम्हें पता है मेरे पास भी एक ऐसी याद है जिसने मुझे हमेशा ये एहसास दिलाया कि मेरी बहन मेरे लिए क्या मायने रखती है। मेरी बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं रहा। जब मैं कॉलेज की जल्दी में खुद का ख्याल रखना भूल जाती थी, वो हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती थी। वे मेरे हाथ में खाना पकड़ाकर मेरे बाल बनाना लगती। उनका वो प्यार भरा रवैया और ये जिद के भूखे पेट नहीं जाना आज भी मेरे दिल का करीब है। वो सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं, मेरे बचपन की सबसे मजबूत डाल थी। किरणी जी, मैंने कुछ ऐसी लाइनें उनके बारे में लिखी हैं, मैं थोड़ा वो बताना चाहती हूँ। वो बचपन की फिक्र, वो बहन का दुलार, मैं भूल जाती थी खुद को पर उन्हें था याद हर बार। न जाने दिया कभी भूखे पेट मुझे दहलीज के पार, कभी कंघी से बाल सवारे तो कभी निवालों से ढेर सारा प्यार।
0: आज हमारी जो गेस्ट थी, आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने बहनों के प्यार के ऊपर इतने अच्छे अच्छे हमें उत्तर दे दिए। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का समय खत्म होता है। श्रोताओं, आज की इस प्यारी सी बातचीत में हमने जाना कि बहन का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि जिंदगी का एक सुकून है, एक ऐसा साथ जो वक्त दूरी और हालात से परे होता है। बहन वो होती है जो हमारी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द भी पढ़ लेती है और हमारी खामोशी में छुपे सवाल भी सुन लेती है। रिश्तों की भीड़ में जो सबसे खास होता है वो बहन का प्यार ही तो होता है, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वो बस दिल में महसूस होता है। सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहती हूँ, आज अगर आपकी भी कोई बहन है पास या दूर, तो इस कार्यक्रम के बाद उसे एक बार जरूर याद कीजिएगा, उसको फोन कीजिए, क्योंकि बहनें जिंदगी में बार बार नहीं मिलती, वह किस्मत से मिलती है। इस खूबसूरत एहसास के साथ मैं किरणी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।
1: मुझे भी इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 7। आज के आमंत्रित मेहमान थे श्रीमती नीरजा बख्शी। सहयोग
1: आप जी सुन रहे हो 90.0 FM पे रेडियो वितस्ता।
0: ये थी हम सफर जिंदगी का मेगाहर्ट्ज
1: रेडियो वितस्ता, अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: और मिला दो 7056413010 पर फोन।
1: मैंने तेरे

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोर्टल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों कुछ ना कुछ व्यापारी हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त, रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। लघु कथाओं की श्रृंखला में आज एक और नई लघु कथा लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं।

हाँ मैं आपको ये बताता चलूं, ये जो लघु कथा है ना, ये इन दिनों की नहीं है, ये सारी बातें काफी दिन पहले की हैं। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिया ने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी, अभी आ रही हूं, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई ना आया, तब डाकिया ने फिर कहा, अरे भाई कोई है क्या, अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज आई, डाकिया चाचा अगर आपको बहुत जल्दी है ना, तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डालकर चले जाइए, मैं आ रही हूं, क्योंकि मुझे तो कुछ टाइम और लगेगा। अब बूढ़े ढाकिया ने झल्लाकर कहा, नहीं मैं ही खड़ा हूं, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी तो चाहिए इस पर। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ था, अब उस लड़की पर ही चिल्लाने वाला था कि दरवाजा खुलते ही वो चौंक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, उसका सारा गुस्सा पल भर में ही फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या जिसके एक पैर नहीं थे वो खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दे दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर ना वहां से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी, उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई उनके यहां सुबह शाम घर में रहती थी, लेकिन उस दिन काम वाली बाई भी नहीं आई थी, लड़की तो उस रोज घर पे बिल्कुल अकेली ही थी। समय निकलता गया, महीने दो महीने में जब भी उस लड़की के लिए कोई डाक आती ना, तो डाकिया एक आवाज देता, और जब तक वो लड़की दरवाजे तक ना आती, तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता चला गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिया को देखा, तो उसने पाया कि डाकिया के तो पैर में जूते ही नहीं है, वो हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया, फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहां मिट्टी गीली थी ना, वहां पर डाकिया के पांव के निशान बने हुए थे, उसने कागज पर ना उन निशानों के चित्र उतार लिए। अगले दिन उसने अपने यहां काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर पर रख दिए। जब दीपावली आने वाली थी, उससे पहले डाकिया ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश चाही, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूं तो उससे मिल ही लेता हूं। साथ ही डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं लगेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5-10 रुपए के चॉकलेट्स ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हूं बुढ़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। लड़की ने आकर दरवाजा खोला तो बूढ़े डाकिया ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी अपने गरीब चाचा की तरफ से ये उपहार रख ले। लड़की बहुत खुश हुई, उसने कुछ देर डाकिया को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के कमरे से एक बड़ा सा डिब्बा उठाया और लाकर डाकिया के हाथ में रख दिया और बोली, चाचा मेरी तरफ से भी दीपावली पर आपको ये भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो बेटी मेरे लिए मेरी बेटी जैसे ही हो, मैं तुमसे कोई उपहार कैसे ले सकता हूं। लड़की ने उससे कहा, चाचा इस गिफ्ट के लिए मुझे मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिया ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसे आशीर्वाद दे रहा। बालिका ने कहा, चाचा इस पैकेट को ना अपने घर ले जाकर ही खोलना। घर जाकर जब उस डाकिया ने पैकेट को खोला, तो आश्चर्यचकित रह गया।
क्योंकि उस पैकेट में एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आई। डाकिया को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा। जो उनके वहां पर बॉस थे पोस्टमास्टर, उन्हें फरियाद की और उन्हें कहा कि मेरा तबादला कहीं और कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिया ने वो जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रूंगे गले से कहा, सर आज के बाद मैं उसके लिए नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पांव को जूते तो दे दिए, पर मैं उसे पांव कैसे दे पाऊंगा। तो दोस्तों, सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होता और ना ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कहते हैं संतोष रखो, ईश्वर का शुक्र अदा करो, क्योंकि जो प्राप्त है ना वही पर्याप्त है। किसी को कुछ मिल जाता है, किसी का कुछ रह जाता है, और सच पूछो तो लिखने वाले ने गलत तो नहीं लिखा। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजन रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: लल यानी लल्लेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने।
1: कश्मीर शैव दर्शन में माता ललेश्वरी का जो ये ललवाक है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी महत्वता आज के विज्ञान में भी आपको उसकी रिफ्लेक्शंस कहीं देखने को मिलेंगी, क्वांटम साइंस में देखने को मिलेंगी। ललदत्त कहती है कि शिवची जैविल जाल वहरेवित, शिवची जैविल जाल वहरेवित, क्रंजन मंशी तरित कियत, जिंदने वुचान अधकार मरित, पान मज पान कड व्यसरित कियत। ललदत्त कहती है कि शिवची जैविल जाल वहरे, शिव जो है जिसे वो शिव कहती है, जिसे वो परम शिव कहती है, जिसे हम मंदिरों में, हम उसे पहाड़ों में, हम उसे योगी के रूप में देखते हैं, ललदत्त उसी शिव को कैसे देखती है? वो कहती है शिवची जैविल जाल वहरे, शिव जो है एक सूक्ष्म जाले की तरह है, जैसे मकड़ी का जाला होता है, वो कहती है शिव एक सूक्ष्म मकड़ी के जाले की तरह है। क्वांटम साइंस उसे कहता है कि कॉन्शियसनेस कि इज द फाउंडेशनल फैब्रिक ऑफ ऑल द मैनिफेस्टेशंस। वो ललदत्त भी वही कहती है कि शिव ची जैविल जाल वहरे, यानी क्वांटम साइंस में जैसे हम आज मैटर कहते हैं, जो ये पेड़ पौधे पहाड़ ये हमारी हड्डियां शरीर आसमान धरती ये सब मैटर है, लेकिन मैटर को भी जब आप क्वांटम डीपेस्ट लेवल पे देखता है, वो कहता है मैटर जो हमें दिखता है वो है नहीं, यानी जो हमें दिखता है वो है नहीं, वो जो है वो हमें दिखता नहीं है। तो साइंस कहता है, क्वांटम साइंस कहता है कि मैटर को अगर डीपेस्ट लेवल पर देखा जाएगा तो आपको वहां कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी है, और वही जो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स की फील्ड है, फोटॉन्स की फील्ड है, वही इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स की फील्ड जो है मैटर को मैनिफेस्ट करती है। और वही देखिए ललदत्त भी कहती है शिवची जैविल जाल वारे विद क्रंजन मंशी तरित कियत, देखने वाली चीजें जो हमें अलग अलग दिखती हैं वो अलग अलग तो है, मैटर हमें अलग अलग दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो गहरी यूनिफाइड फील्ड है वो हमें नहीं दिखती, और वो क्वांटम साइंस भी कहता है और ललदत्त भी कहती है शिवची जैविल जाल वारे विद क्रंजन मंशी तरित कियत, ना हमारे इंजर पिंजर अस्थि सब एक है, उसी के वो उसी का मैनिफेस्टेशन है। फिर कहती है ललदत्त कहती है कि ये सब उसी फील्ड की एक मैनिफेस्टेशन है, यानी जिसे वो शिव कहती है, वो कहती है उसी शिव का ये विस्तार है और वो हमारा शरीर जो है उसी सेम फील्ड का बना हुआ है। फिर कहती है जिदना विचान अधकार मरित, मतलब जीते जी उसको नहीं देखोगे तो फिर कब देखोगे, मर के देखोगे। वो मरना और जीना ये वो वाला जीना नहीं जिसे हम जो इंसान देखता है जीना और मरना, वो के हम जो हैं अभी जिसको हम जीवन कहते हैं यही तो मरण है, असल में हम मरने वाला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में सब जी रहे हैं, मैटर के साथ सब जी रहे हैं, मैटर की इल्यूमिनेशन में, मैटर की जो लालसा में सब जी रहे हैं, तो वो तो मरना है, उसे वो मरना कहती है। असली जीना वो कहती है जिंदगी मुछन अरकत मरित, यानी मर के तुम उसको नहीं देख पाओगे, आप बाहर रहोगे तो कभी देख नहीं पाओगे, उसके लिए जीना पड़ेगा और जीना के लिए आपको अंदर की यात्रा में जाना पड़ेगा। जिंदने उछानात कर मरित पानमज पान कड़ व्यसरित कियत, यानी भीतर उतरना पड़ेगा, स्वयं को पहचानना पड़ेगा, अंदर खोजना पड़ेगा, मतलब वो खोजने की जो यात्रा है बाहर नहीं है, खोजने की यात्रा अंदर है, यानी जिस शिव को हम बाहर खोजते हैं वो असल में हमारे अस्तित्व के भीतर ही उपस्थित है, यानी जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसी एग्जिस्टेंस के अंदर ही वो अवेलेबल है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। तो जीते जी यानी उस जीवन उस जीने की राह पर जब हम चलें, उस अंदर की भीतर की राह पर जब हम चलें, तो पहचानना ही साधना है, उस पहचानने को ही हम साधना बोलते हैं। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी हमारी पहचान उस शिव के साथ बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब हम वही शिव बन जाएंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही शिव बन गई होगी और हम कहेंगे अहम शिवम, हम कहेंगे शिवो हम। कितना ही ब्यूटीफुल वाक हजारों साल पहले ललदत्त का दिया हुआ।

इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रमेश मराठा। आइए महसूस हो जाएं फिल्मी नखमों से, ताअबद जलते रहे गरिये इंतजार के चिराग, ताअबद जलते रहेंगे हम भी उनके।

जानती थी, रिश्तों की बारीकियों को समझती थी, समझाती थी मोहब्बत की जुबां। एक अनजानी लड़की थी, पर थी वो मासूम, नादान, सहमी सहमी। उड़ते परिंदों के संग उड़ने की चाहत ली, ख्वाबों को तरतीब देना।

हरा है मौसम और तुम्हारी यादों के इंद्रधनुष में जीवन गुजरता गया। बंद आंखों के तस्वीर में ढल जाती हो, बंद आंखों के तस्वीर में ढल जाती हो, चल जाती हो और जल जाती हो। मेरे रास्तों को रोक लेती हो अपनी आहुजारी से, दुपट्टे की छांव तले सहलाती हो, संभालती हूँ

ये रास्ते ही प्यार की खुशबू का एहसास लिए आओ हम चले इन्हीं राहों पे मुस्कुराहट का लिबास पहने। महकाएं अपने वजूद को और रोशन करें भीगे मौसम को और टूटे अब्र को क्योंकि ये रास्ते हैं

खूबसूरत एहसास हो जिसे मैं महसूस करता हूं अक्सर अपनी तन्हाइयों में। याद आते हैं गुजरे वो पल जब इन साफ़ो शफाफ पानियों में हम अपने चेहरों के अक्स ढूंढते, देखते, परखते और पहचानते थे। बहुत देर तक इन किनारों पे शब कटती थी इंतजार में। हाँ, इंतजार में, शायद यूं ही बेवजह।

बेताबियां सुलग गई, धीरे धीरे खाक में मिल गई, बिछ गई, दब गए उम्मीदों के ख्वाब जमीनों की गोद में। अब के मौसम सिर्फ जर्द रहे, साथ रहते रहते तुम क्यों बिखर गए, खफा हो गए, और मैं वक्त के साथ साथ

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। आपने फिल्मी नगमों का ये सफर तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 14। आज का कार्यक्रम आधारित है संगीतकार रोशन पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड और एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।
1: सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। आपने ट्यून इन किया है 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। आज सुनहरे पल में हम उस महान संगीतकार की दास्तान सुनेंगे जिन्होंने खामोशी को सुरों का जामा पहनाया, रोशन लाल नागरथ। 1917 में गुजरांवाला अब पाकिस्तान में जन्मे रोशन जी के पिता चाहते थे कि वो संगीत नहीं कुछ और करे, मगर उनके दिल में एक कसक थी। वो घर से भागकर लखनऊ के मरीज कॉलेज आ गए। वहाँ उन्होंने पंडित एसएन रत्नागर से संगीत की वो बारीकियाँ सीखी जो आगे चल के उनकी पहचान बनी। उनकी जिंदगी का पहला सुनहरा पल तब आया जब केदार शर्मा ने उन्हें मुंबई बुलाया और फिल्म बावरे नैन मिली। इस फिल्म ने उन्हें एक ही रात में सितारा बना दिया।

मुंबई में रोशन साहब का संघर्ष आसान नहीं था। उन्हें एक वक्त दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करनी पड़ी। वही उनकी मुलाकात इरा मोइत्रा जी से हुई, जो एक बेहतरीन गायिका थी। दोनों ने शादी की और इरा जी ने अपने करियर से ज्यादा रोशन साहब के सपनों को सींदा। रोशन जी बहुत नरम दिल थे, कई बार लोग उनका फायदा उठाते थे, पर इरा जी उनकी ढाल बनकर खड़ी रही। संघर्ष के उसी दौर में फिल्म मल्हार आई, जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। फिल्म तो नहीं चली, पर संगीत ने धूम मचा दी। संघर्ष के उसी दौर में 1951 में फिल्म आई हम लोग। इस फिल्म ने रोशन साहब को वो पहचान दी जिसके वे हकदार थे। इसका संगीत इतना हिट हुआ कि हर गली में रोशन साहब का नाम गूंजने लगा।

दोस्तों, रोशन साहब इतने काबिल थे पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिलने में बहुत वक्त लगा। 1963 में आई फिल्म ताजमहल, रोशन साहब ने इस फिल्म के लिए संगीत नहीं बल्कि एक अफसाना लिखा था। साहिर साहब के साथ उनकी जोड़ी इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाते थे। ताजमहल के संगीत ने उन्हें वो सम्मान दिलाया जिसके वो हकदार थे। इस फिल्म ने दिखाया कि रोशन जी से बेहतर रोमांटिक और शायराना दुनिया कोई नहीं बना सकता।

लोग समझते थे कि रोशन साहब सिर्फ गंभीर या कवाली वाले गाने बनाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे चुलबुले गाने दिए जो आज भी पार्टी की शान है। रोशन साहब ने दिखाया कि वो सादगी में भी जादू फूंक सकते हैं। मुकेश जी की आवाज को उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म में इस्तेमाल किया वो उनके फन का एक नया पहलू था।

रोशन साहब को राग यमन का बादशाह कहा जाता है। उनका मानना था कि क्लासिकल संगीत ही वो बुनियाद है जिस पर फिल्मी गाना खड़ा होता है। वो अक्सर सुबह सुबह रियाज करते थे और नए सांसों का प्रयोग करते थे। उनकी फिल्म आरती में उन्होंने सारंगी का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया कि सुनने वाले रो पड़े। उनके हर गाने में एक अजीब सी नजाकत होती थी, जैसे रेशम का कोई धागा हो।

लता मंगेशकर जी रोशन साहब को अपना भाई मानती थी। वो कहती थी कि रोशन भैया की धुन गाना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। रोशन साहब लता जी की आवाज के इतने बड़े प्रशंसक थे कि कई बार वो सिर्फ लता जी को ध्यान में रखकर ही धुन बनाते थे। उनका मानना था कि जो मिठास लता की आवाज में है वो किसी साज में नहीं।

दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि रोशन साहब का सबसे बड़ा काम क्या है, तो मैं कहूंगी फिल्म चित्रलेखा। इस फिल्म के लिए उन्होंने जो संगीत दिया वो किसी तपस्या से कम नहीं था। मन रे तू कहीं ना धीर धरे, इस गाने को भारत का सबसे बेहतरीन फिल्मी गानों में गिना जाता है। इस गाने में संगीत कम और सुकून ज्यादा है। रोशन जी ने इसे बनाने के लिए कई रातें जाग कर बिताई थी। रोशन साहब को दर्द भरी धुनों का माहिर माना जाता था, लेकिन उन्होंने रोमांटिक गानों में भी जो मिठास घोली उसका कोई जवाब नहीं। फिल्म भीगी रात का संगीत इसका जीता जागता सबूत है। मजरू सुल्तानपुरी के साथ उनकी ये जुगलबंदी इतनी हसीन थी कि आज भी प्रेमी जोड़े इन गानों को गुनगुनाते हैं। इस गाने की धुन इतनी फ्रेश है कि लगता ही नहीं है कि ये 60 के दशक का गाना है।

16 नवंबर 1967। वो एक काली रात थी। रोशन साहब एक पार्टी में गए थे जहां उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। सिर्फ 50 साल की उम्र में वो दुनिया से विदा हो गई। उनका जाना संगीत के एक दौर का अंत था। उनके जाने का गम पूरी इंडस्ट्री को था, मगर वो जाते जाते अपनी विरासत बेटों राकेश और राजेश रोशन के रूप में छोड़ गए, जिन्होंने उनका नाम आज भी जिंदा रखा है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 14। आज का कार्यक्रम आधारित था संगीतकार रोशन पर। कार्यक्रम को एडिट और रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आज मैं आपके लिए लाया हूं कार्यक्रम इनसे मिलिए का एपिसोड 9। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। समय एक अनमोल संसाधन है जिससे हमें सत्यापित करना चाहिए। वक्त का नुकसान न करने वाले लोग सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। समय का महत्व शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत विकास के सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। हमारे जीवन में घड़ी का बहुत प्रमुख स्थान है जिससे हम समय समय पर सही वक्त का पता लगाते हैं। चाहे हम विश्व के किसी भी देश में हो, समय वही 24 घंटे सबके लिए है। मैं आज समय और घड़ी की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज के हमारे इस कार्यक्रम में अंबाला की एक ऐसी हस्ती है जो हमारे लिए घड़ी बनाते हैं। पर घड़ी तो सब बनाते हैं, पर इनमें कुछ खास है, ये व्यक्तित्व कुछ अलग है। करते हैं स्वागत आज के मेहमान का, जिनसे आपको चौंकाने वाली जानकारी भी मिल जाएगी। स्वागत, अभिनंदन सुरेंद्र कुमार जी आज के इस कार्यक्रम इनसे मिलिए में।
1: भारत जी, मैं आपका और आपके सभी श्रोतागण का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां पे आने का मौका दिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। कृपया आप हमारे श्रोताओं को अपना संक्षेप में परिचय दें ताकि आपको वो और अच्छे से जान सके।
1: मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं अंबाला सिटी में पटेल रोड पर जनता वॉच कंपनी के नाम से घड़ी की दुकान करता हूँ और ये काम मैंने अपने फादर श्री हरबंश लाल जी से सीखा, क्योंकि घर पे बड़ा होने की वजह से मेरे को उनके साथ दुकान पे जाने का मौका मिलता था, क्योंकि उनके कोई और ब्रदर या सिस्टर नहीं थे। अकेले होने की वजह से वो मेरे को कहीं बाहर जाना होता था तो मेरे को दुकान पे बिठा जाते थे, तो जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट घड़ी की तरफ बढ़ता चला गया। उसके बाद मैंने उनसे काम सीखा और उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं इसमें कुछ और अच्छा कर पाऊँ, मतलब हर टाइप की घड़ी की तरफ अपना ध्यान दिया, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे ऑटोमेटिक हो, चाहे क्वार्ट्स हो, हर लाइन में मेरा एक अलग तजुर्बा रहा।
0: सुरेंद्र जी, आपने घड़ी की बात की तो जो घड़ी की टिक टिक होती है वो आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है?
1: टिक टिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आदमी के टिक टिक खत्म हो जाती है तो समझ लीजिए आप आदमी आज एक पल में
0: यानी कि ऊपर चला जाता है। यानी कि आप घड़ी की टिक टिक को हमारे जो दिल की टिक टिक धड़कन है
1: उससे कंपैरिजन करते हैं।
0: आपको आज यहाँ बुला के और आपसे जो हम वार्ता करेंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को वो पसंद आएगी और हम कोशिश करेंगे लोगों को अपनी उस जिंदगी की टिक टिक से, घड़ी की टिक टिक से लेके जिंदगी की आगे की ओर हम बातचीत करें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके बारे में जब जाना तो पता चला कि आप सेल्फ मेड घड़ी साज हैं, कृपया विस्तार से बताएं।
1: सेल्फ मेड का मतलब है खुद से किसी खुद को किसी काम के लिए तैयार करना। ऐसे ही मैंने किसी कंपनी से या किसी संस्था से इसका बारे में कोई डिप्लोमा वगैरह मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, सिर्फ अपने पापा को देख देख कर और खुद उस पर मेहनत करके मैंने इस काम को सीखा और आज वर्ल्ड की कोई भी घड़ी कैसी भी हो मैं उसको प्रिपेयर कर सकता हूँ।
0: यानी कि आपकी जो महारत है घड़ी की, जो मशीनरी है, घड़ी वैसे एक छोटा सा उपकरण है, तो आपकी दिलचस्पी कैसे बनी कि उनकी छोटी छोटी जो पुर्जे हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप में देखने पड़ते हैं, तो उस तरीके से आपकी दिलचस्पी कैसे बनी?
1: जैसे जैसे काम करता है आदमी तो उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उस काम में बढ़ता चला जाता है
0: जी।
1: नए चैलेंजेस आते हैं, नई कंपनी की, जैसे हम कुछ देखते हैं एक कंपनी की घड़ी है तो कल को दूसरी आ गई तो उसमें कुछ डिफरेंट है, तो आदमी को सोचता है यार इसमें अलग क्या है, तो वो जो देखने की और समझने की प्रक्रिया है वही आदमी को आगे ले जाती है। अगर हम उसी स्टेप पे रुक जाते हैं, हमने आगे और नहीं जाना, तो लाइफ हमारी रुक जाएगी
0: जी।
1: तो नया सोचने के लिए, नया समझने के लिए आपको नई तरफ भागना पड़ेगा
0: जी। यानी कि कोई भी काम हो उसको निरंतर उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो अलग अलग घड़ियां हैं, चाहे वो हमारे देश की बनी हुई है या बाहर की आई है, बेसिक स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही होगा या सबका अलग अलग होता है?
1: अब बेसिक तो मेनली एक रहता है, लेकिन उसमें क्या है कि वर्किंग उसके फंक्शंस में डिफरेंस आ जाता है
0: जी।
1: जैसे कुछ में अगर डेट है, डे नहीं है, किसी में डे और डेट इकट्ठे हैं, किसी में डे ऊपर है, डेट नीचे है, मतलब डे डेट तो इक्वल है लेकिन उनको ये है कि प्रेजेंटेशन उनकी अलग अलग हो जाती है।
0: यानी कि उनकी जो मशीनरी है वो अलग अलग तरीके से काम करती है, किसी में डेट और तारीख एक साथ ही बदल जाती है, किसी में अलग अलग बदल जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया क्या आप सुनाना चाहेंगे हमारी श्रोताओं को जिसने आपकी जिंदगी में बदलाव लाया हो।
1: बिल्कुल, मेरी जिंदगी में बदलाव का जो मेन कारण था वो क्या था कि मेरी सिस्टर इन लॉ की मैरिज थी June 1997 में
0: जी।
1: तो मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ से अम्बाला कैंट से सुपरफास्ट सुबह जाती है उस ट्रेन में मेरठ जाने के लिए सवार हुआ
0: जी।
1: तो रश बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से मेरे को सामान रास्ते में ही रखना पड़ा। आगे जब जगाधरी के पास थोड़ी बर्थ खाली हुई तो मैंने सामान वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो मेरठ जाके जब मैंने अपना सामान देखा तो उसमें से मेरा जो ज्वेलरी का पर्स था वो गायब हो चुका था।
0: अच्छा।
1: जिसकी वजह से अत्यधिक टेंशन और सोचने की वजह से उसका इफेक्ट सारा मेरी आंख पर पड़ गया, राइट आईज पर
0: जी।
1: और मेरी राइट आई पे पर्दे में होल हो गया।
0: ओहो।
1: तो जब मैंने पीजीआई में चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि ये आपकी बारीक नजर के बिल्कुल नजदीक में है इसलिए इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसको आप ऐसे ही कंटिन्यू रखना पड़ेगा
0: जी।
1: तो फिर उसके बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे को मतलब ऐसी चीजें क्यों दी जो पल भर में जिनका कुछ भी साथ ना हो। एक मिनट में सारी उम्र की कमाई जो मेरी थी वो एक सेकंड में चली गई। तो मेरे साथ कुछ ऐसा प्रभु दो कि जो मेरे से कोई भी ले ना सके, छीन ना सके
0: जी।
1: तो इसी विचारों के साथ एक दिन मैं दुकान पे काम कर रहा था तो मेरे पास एक बुजुर्ग आए जिन्होंने उर्दू में कुछ लिखना शुरू किया। तो मैंने उनकी तरफ ध्यान दिया तो मेरे को लगा कि ये कुछ अलग से काम कर रहे हैं,
0: यानी कि जैसे हम हिंदी और अंग्रेजी लिखते हैं उसमें हम दाई से लिखना शुरू करते हैं।
1: हाँ जी,
0: और उर्दू तो दाई से शुरू होता है।
1: दाई से शुरू होता है
0: जी।
1: तो उस चीज को देख के मेरे पे विचार आया कि हम अगर हम उल्टा लिख सकते हैं तो उल्टा देख भी सकते हैं। तो उस पे मैंने अपना काम शुरू किया।
0: सुरेंद्र जी, जो आपकी सोचने की जो क्षमता है उसको देखते हुए हम इसमें विस्तार से बात करेंगे, बट उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा जब आप कभी अच्छे मूड में हो क्या आप संगीत सुनते हैं?
1: बिल्कुल सर, संगीत तो जीवन की लाइफ लाइन है
0: जी।
1: किसी भी जीवन को चलाने के लिए संगीत का एक अलग सी स्थान है, उसके बिना जिंदगी अधूरी है। टिक, टिक, टिक, टिक, टिक।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। हमारे साथ आज हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो एक खासियत से जाने जाते हैं, उसी के बारे में इनसे ही पूछते हैं। सुरेंद्र जी, एक आम गड्डी साज और आप में क्या अंतर है, जिस वजह से हमें भी आपको यहाँ आमंत्रण देना पड़ा ताकि हम ये बात अम्बाला के सभी लोगों तक पहुँचा सके।
1: भारत जी, आपने जो क्वेश्चन मेरे से किया बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मेरे पास मेरी शॉप पे एक आदमी आया और उसने मेरे सामने उर्दू में कुछ लिखा, तो मैं एकदम फर्स्ट टाइम उस उर्दू को लिखते हुए देखा था, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी तो हम बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन उर्दू जो है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी गई मेरे सामने। तो मेरे को लगा कि मैं जो घड़ी है कुछ उसको भी ऐसे मॉडिफाई करूं कि वो क्लॉक वाइज की जगह एंटी क्लॉक वाइज टाइम दिखाना शुरू करे।
0: तो ये तो एक बहुत बड़ा आपके दिमाग में ख्याल आया कि नॉर्मली आज तक हमने देखी है घड़ियां जो है वो क्लॉक वाइज चलती है, यानी कि वो दाएं की तरफ चलती है। तो क्या आपके मन में ये ख्याल आया कि जब उर्दू उल्टी लिखी जाती है तो घड़ी भी इस तरीके से मैं बना दूं कि वो उल्टी ही चले,
1: देखा जाए? बिल्कुल।
0: तो फिर आगे क्या रहा?
1: तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया और बहुत जल्दी पहले मैंने उसमें क्वार्ट्स में बनाई, उसके बाद मैकेनिकल पे ट्राई किया, जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम थी, जिसमें हम चाबी सीधी भरते थे लेकिन टाइम वो उल्टा दिखाती थी। उसके बाद फिर मैंने उसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट किया और उसके बाद जैसे जैसे मेरे पास लोगों की डिमांड आती गई तो उसको हर अलग अलग लैंग्वेज, जैसे कोई मलयालम में मांगता मेरे से, कोई उड़िया में मांगता, और ऐसे बाहर से भी कुछ लोगों ने जैसे रोमन में या उर्दू में, अरेबी में डिमांड आनी शुरू हुई, तो उसके ऊपर मैंने फिर काम किया और हर लैंग्वेज में मैंने उसको डेवलप किया।
0: मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके मन में ये ख्याल आया, जब एक घड़ी हम खरीदते हैं तो उसकी जो मशीनरी वो एक मशीन में बनती है, अब क्योंकि वो क्लॉक वाइज होती है, जब आपने एंटी क्लॉक वाइज उसको सोचा तो क्या आपने उसी मशीनरी को यूज किया या आपने कुछ नए पार्ट्स बनाए जिस वजह से वो एंटी क्लॉक वाइज चलनी शुरू होगी?
1: मतलब उसमें क्या है कि हर मशीन का अपना अपना सिस्टम है
0: जी।
1: कुछ मशीनें तो ऐसी थी जिसको उसी मशीन में ही मैंने मॉडिफाई करके उसको उल्टा चला दिया
0: जी।
1: और कुछ मशीन ऐसी थी जिसमें मेरे को एक आधा पार्ट्स अलग से दूसरी घड़ी का उसमें ऐड करना पड़ा
0: जी,
1: जिसके रिजल्ट में मतलब उल्टी एंटी क्लॉकवाइज टाइम शो हो।
0: अम्बाला के सभी श्रोताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अम्बाला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद आप जानते नहीं हैं। रेडियो विदस्ता की कोशिश है कि हम उन लोगों को यहाँ आमंत्रण दें और उनसे बात करके आपको अम्बाला के लिए गौरवान्वित महसूस कराएं। हमारे साथ जो सुरेंद्र जी आज हैं, आप ये मान के चलिए कि एक ख्याल इनके मन में आया और उन्होंने उस ख्याल को साकार कर दिया। आमतौर पर हमने हमेशा, चाहे हमारी हाथ की घड़ी है या क्लॉक है, कोई भी है, वो क्लॉक वाइज चलती है, यानी कि वो दाएं की तरफ चल के अपना चक्कर पूरा करती है। पर इनके मन में ख्याल आया कि हम घड़ी बनाएंगे जो उल्टी चलेगी, समय वो वही दिखाएगी पर वो एंटी क्लॉक वाइज चलेगी। तो ये हमारे लिए और हमारे अम्बाला के लिए एक गौरव का पल है। इसके लिए सुरेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने ये एंटी क्लॉक वाइज घड़ी सोची और बनाई, सबसे पहले आपने इस बात को किसके साथ शेयर किया?
1: भारत जी, सबसे पहले मैंने ये ट्रेड पोस्ट घड़ी मैगजीन आती है
0: जी,
1: उनको लिखा इस बारे में
0: जी,
1: क्योंकि उसमें क्या है कि पूरे इंडिया की घड़ी की जो भी कंपनीज या जो भी मॉडल्स बनते हैं उसमें डिटेल वाइज वो आते हैं
0: जी।
1: तो उन्होंने मेरी इस जो इन्वेंशन को अपने उसमें स्थान दिया और पूरे का पूरा एक पेज मेरे ऊपर उन लोगों ने प्रेजेंटेशन दी मेरे को।
0: क्या उसके साथ साथ आपने इस को पेटेंट भी कराया कि ये आपके नाम रहे कि जो एंटी क्लॉक वाइज घड़ी, इससे पहले भी किसी ने बनाई थी या आपने ही पहले बनाई?
1: इससे पहले किसी ने नहीं बनाई थी, लेकिन उस टाइम मेरे को पेटेंट की नॉलेज नहीं थी
0: जी,
1: जिसकी वजह से मैं पेटेंट नहीं करवा पाया
0: जी।
1: लेकिन उसके बाद मैंने इसका एक नाम रखा एंटी,
0: ओके,
1: तो उसको मैंने रजिस्टर्ड करवाया अपने नाम से
0: जी,
1: और उसी के नाम पे मैं उसको आज का अभी तक बेच रहा हूँ।
0: ये एंटी का थोड़ा विस्तार में बताएं, क्या आपका कहने का मतलब है?
1: एंटी जो है मैंने अपनी वाइफ के नाम पे रखा है, मेरी वाइफ का नाम है अंजलि
0: जी,
1: तो अंजलि टाइम इंडस्ट्रीज के फर्स्ट वर्ड लिए हमने लिए
0: जी,
1: और उसके फर्स्ट वर्ड ANTI और एंटी मतलब एंटी क्लॉक भी था
0: जी,
1: तो दोनों मतलब नाम सूट करते थे, जिसकी वजह से हमें ये नाम अच्छा लगा और हमने अपना ब्रांड नेम एंटी रखा।
0: साथ में काम के अलग मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ माना जाता है। आपने अपनी धर्मपत्नी का नाम लिया, तो उनका साथ, उनका सपोर्ट आपकी जिंदगी में कितना है?
1: देखिए, वाइफ जो है अर्धांगिनी गिनी जाती है, मतलब आपका अधांग।
0: जी,
1: तो ये मान के चलिए कि हर कोई भी व्यक्ति है बिना किसी सपोर्ट के या अपनी बिना वाइफ की सपोर्ट के सफल होना बहुत मुश्किल होता है।
0: जी।
1: कहीं ना कहीं उसका साथ, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकल हो, कैसा भी हो, जरूरी होता है। और वही आपको आगे इंस्पिरेशन देता है काम करने की, क्योंकि अगर वो घर सही से संभालेगी तो आप अपने काम पे मन लगा पाओगे। अगर पीछे से टेंशन होगी तो आप मन काम में नहीं लगेगा आपका। तो इसलिए उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है, और इसलिए मैंने जो है उनके नाम को प्रेफर किया।
0: इस मंच से जो आज तक आप उनको नहीं कह पाए, क्या कहना चाहेंगे अपनी धर्मपत्नी को?
1: मैं एक छोटा सा गाना डेडिकेट करता हूँ उनको, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था।
0: आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुरेंद्र जी की ये भेंट जो उन्होंने डेडिकेट की है अपनी धर्मपत्नी को।

0: सुरेंद्र जी, आपकी ये उपलब्धि एंटी क्लॉक वाइज यानी उल्टी चलने वाली घड़ी को क्या मान्यता मिली? क्या आपको इसके लिए सम्मानित भी किया गया?
1: इसके लिए भारत जी मेरे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला
0: जी। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जब हम कोई भी काम ऐसा करते हैं तो और हम किस तरीके से इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुँचाते हैं?
1: इसमें क्या होता है कि हमें एक प्रशासन का प्रशस्ति पत्र और एक फर्स्ट रैंक ऑफिसर का प्रशस्ति पत्र लेकर और उनको अप्लाई करना पड़ता है
0: जी।
1: तो जिसके लिए मैंने डीसी अम्बाला जो उस टाइम थे उनसे और प्रिंसिपल ऑफ डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल उनसे मैंने प्रशस्ति पत्र लिए और उनके बिहाव पे मैंने आगे अप्लाई किया।
0: क्या वो आके उन्होंने अपने काम को देखा और उसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज किया?
1: नहीं, जो पेपर मैंने अपलोड किए थे जो डॉक्यूमेंट्स उनके बेस पे ही उन्होंने मेरे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का स्थान दिया।
0: सर्टिफिकेट है वो मिला आपको। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक अलग पहचान बनाने वाली घड़ी साज ने क्या कुछ और भी किया है जो शायद किसी ने आज तक ना किया हो?
1: बिल्कुल भारत जी, जैसे जैसे लाइन में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और आप अपना 100% देते हो तो प्रभु भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नया करने की रास्ता देता है
0: जी।
1: मैंने अभी जैसे पहले बताया कि मेरी एक आंख खराब हो गई थी
0: जी।
1: तो मैंने कोशिश की थी कि मैं बिना आंखों के घड़ी रिपेयर करने की ट्राई करूं। तो मैंने आंखों पे पट्टी बांध के कुछ प्रैक्टिस की जिसमें मेरे को कामयाबी भी मिली
0: जी।
1: और मैंने कुछ समाचार पत्र वालों के आगे अपना ये जो काम था प्रेजेंट किया और जिसमें मैंने 2 मिनट से भी कम समय में पूरी घड़ी खोल के वॉल क्लॉक की मशीन को और दोबारा रीअसेंबल करके और रनिंग कंडीशन में उनको दिखाया तो उन्होंने भी मेरे को अपने न्यूज़पेपर में स्थान दिया।
0: जो आपकी ये काबिलियत है इसको आप किस तरीके से आंकते हैं?
1: काबिलियत तो देखिए सर, अपने आपके 100% रिजल्ट जो मिलेंगे आपके अपनी मेहनत से ही मिलेंगे
0: जी।
1: और अगर उसके साथ अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट हो जाए तो उस आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। लेकिन हम लोगों की सिर्फ सबसे बड़ी कमी यही है कि हिंदुस्तान में सब कुछ होते हुए भी सिर्फ सिस्टम की कमी है। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मेक इन इंडिया की तरफ ध्यान दे, और अगर कोई आदमी कुछ नया लेके या कुछ नया करके दिखाता है तो उनको चाहिए कि उसकी सपोर्ट करे,
0: उसको प्रोत्साहन
1: और प्रोत्साहन किया जाए और जो भी गवर्नमेंट्स की स्कीम है उसके उसका बेनिफिट दिया जाए ताकि वो और अच्छे एफर्ट्स कर सके।
0: सुरेंद्र जी, अब समय है एक और गीत सुनाने का, तो मैं चाहूंगा कि जो आपका कोई मनपसंद गीत हो आप वो बताएं, वो हम आपको और हमारे श्रोताओं को भी सुनाएंगे और आपके साथ जो बातचीत है वो हम जारी रखेंगे।
1: मैं एक छोटा सा गीत आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सुनाने के लिए
0: जी।
1: कि एक ताजमहल दिल में हर कोई है बसाए
0: जी,
1: कोई तो बना पाए कोई ना बना पाए।
0: आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुरेंद्र जी का ये मनपसंद गीत और आप बने रहिए हमारे साथ और हम ये बातचीत इसके बाद सुरेंद्र जी के साथ जारी रखेंगे।

0: मुझे उम्मीद है कि आपको सुरेंद्र जी का ये मनपसंद गीत पसंद आया होगा। आप हैं हमारे साथ FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर, और हमारे साथ है सुरेंद्र जी जो अंबाला सिटी से है। ये प्रोग्राम का आखिरी भाग है, पूछते हैं आज के आमंत्रित मेहमान से। सुरेंद्र जी, आप ये बताएं कि आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है?
1: जीवन में सर मेन लक्ष्य जो होता है, नेचर को साथ लेकर चलना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक नेचर ही है जो हमें हर तरह का रास्ता दिखाती है
0: जी।
1: तो मेरे मन में जो अभी लक्ष्य मैंने आज निर्धारित किया वो क्या है कि रेनबो को देखने के बाद मेरे को लगा कि जैसे रेनबो पूरी कहीं से भी हम देखें, किसी भी सिटी से, किसी भी कंट्री से, तो आपको एक जैसा दिखेगा
0: जी।
1: तो उसी कॉन्सेप्ट को जैसे मैंने अपनी घड़ी में उतारा, और उसमें मैंने जैसे हमें हर देश से एक ही रेनबो दिखता है, तो ऐसे ही मैंने अपनी घड़ी में एक ही डायल से अलग अलग कंट्रीज का टाइम रिप्रेजेंट किया। तो मेरी जो घड़ी मैंने नई डेवलप की है उसमें वॉल क्लॉक, उसमें आप 50 से ऊपर देशों का टाइम एक ही वॉल क्लॉक में देख सकते हो।
0: यानी कि आपने उस घड़ी का डायल पैड, जैसे रेनबो के 7 रंग है, उस हिसाब से आपने देशों के हिसाब से, रंगों के हिसाब से बना दिया डायल पैड, जिससे हम अलग अलग देशों का समय देख सकते हैं। तो उसमें सुइयां कितनी है?
1: 2 सुइयां हैं सर,
0: जैसे हर घड़ी में होती
1: है। हर घड़ी में होती है 2 सुइयां,
0: यानी कि उस रंग को देख के हम उस देश का समय देख सकते हैं।
1: देख सकते हैं सर,
0: ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं सुरेंद्र जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ये कार्यक्रम लोग सुनेंगे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आना चाहे और आपसे ये घड़ी लेना चाहे, तो उसको कहाँ आना पड़ेगा?
1: उसके लिए सर अंबाला सिटी में पटेल रोड पे जनता वाच कंपनी के नाम से मेरी शॉप है
0: जी,
1: जहाँ पे मैं सुबह 9 से लेकर 8 बजे तक शाम के अवेलेबल रहता हूँ।
0: यानी कि वो वहाँ पे आ जाएं और आपसे इस नायाब जो तोहफा है उसको आपसे खरीद सकते हैं। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि उनमें पेशेंस की बहुत कमी है
0: जी,
1: क्योंकि जिंदगी में अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि मिनट में काम हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है
0: जी। यानी मेहनत के बगैर आज के समय में हम तरक्की नहीं कर सकते। तो आज के युवा, उनको आप ये कहना चाहते हैं कि समय के साथ साथ वो मेहनत भी करें, और डेडिकेशन के साथ अगर वो कुछ करना चाहें तो वो अपनी जिंदगी में आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो आपका इस घड़ी के माध्यम से उनको क्या संदेश है?
1: समय की वैल्यू को पहचाने
0: जी,
1: और जो समय उनके हाथ में है उनका सही यूटिलाइज करें
0: जी,
1: क्योंकि क्या होता है कि हम लोग समय रहते

0: चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते, और जब समय निकल जाता है तो जब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। तो दोनों समय का और अपनी जो इच्छा शक्ति है या जिस तरफ उनका इंटरेस्ट है, उन चीजों को मिलाकर अगर वो मेहनत करते हैं तो कामयाबी उनसे दूर नहीं हो सकती।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका, आप हमारे पास स्टूडियो में आए, आपने समय निकाला, और हमें बहुत खुशी है कि हमें आप जैसे महानुभावों से मुलाकात होती है, और कोशिश करते हैं कि अंबाला के लोग आपकी ये वार्ता सुन के वो भी गर्व का अनुभव महसूस करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, धन्यवाद। आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि स्टूडियो 90.0 मेगाहर्ट्ज पर जब आप आए, आपको यहाँ आके कैसा लगा?
0: मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि अंबाला के लोगों के लिए ऐसा ऑप्शन पहले नहीं था, जहाँ पे वो ऐसा मंच जिसपे वो अपनी बात रख सकें या लोगों को अपने बारे में बता सकें। मेरे जैसे और भी बहुत मेरे साथी होंगे जो किसी ना किसी फील्ड में एक अपना अलग महत्व रखते होंगे, स्थान रखते होंगे। तो ये जो है, ये प्रयास रेडियो वितरता का बहुत अच्छा है उन लोगों के आगे आने के लिए और अंबाला के लोगों को उनके बारे में बताने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम चाहते हैं इस प्रोग्राम में इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
0: जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान थे श्री सुरेंद्र कुमार। कार्यक्रम को रिकॉर्ड प्रस्तुत व निर्देशन दिया भारत सुपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz की प्रस्तुति।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का।
1: तोचु बोजान FM 90.0 रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी हुन। بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

यो आ मेरा हरियाणा, जहां अंडिया मा दाल पकाना, यो आ मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे मा और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकर आई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच मा, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणा के रीति रिवाजा के बारे में। तो सुनना ना भूलियो अर शनिवार अर रविवार सबेरी 7:05 पा अर दोपहर नू 2 बजे सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़।

रेडियो विदस्ता। अंबाले का अपना रेडियो सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यो सा FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सब।

चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहे।

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। आज के हमारे मेहमान है श्रीमती हरजीत कौर लांबा, प्रस्तुतकर्ता आजय किरने।
1: कार्यक्रम घर परिवार के आज के अंक में मैं किरनी सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं और हरजीत लांबा जी आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: सबसे पहले सभी सुनने वाले श्रोता को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार और किरनी जी आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में आए। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले तो घर में खुशियों के फूल खिले। एक नारी अकेले ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आप समझ ही गए होंगे कि आज चर्चा का विषय है नारी। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ हरजीत जी, आप बेटियों यानी नारी की व्याख्या किन शब्दों में करोगे?
2: देखो, जब बेटी का जन्म होता है तो परिवार में बहुत खुशी का माहौल होता है। बेटी के बिना कोई परिवार पूरा नहीं होता। बहुत खुशनसीब हैं वो माता पिता जिनके परिवार में बेटी होती है। आपकी बेटी हमेशा आपकी स्थिति को समझती है। अच्छे बुरे का बेटियां परिवार के लिए उपहार की तरह होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक बेटी चाहते हैं ताकि उनका परिवार पूरा हो सके। कई लोग बेटी को बोझ समझते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। बेटियां उनके लिए वरदान होती हैं। यही बेटी नारी की भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ, जो बेटी है वो घर को स्वर्ग बनाती है। हर एक चाहता है कि उसकी एक बेटी हो। बेटी समाज का मूल आधार है तथा ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत और अमूल्य रचना है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नारी समाज में अनेक रिश्ते निभाती है, चाहे वो बहन का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, दादी का हो, आपका क्या मानना है? कृपया विस्तार में बताइए।
2: परिवार में बेटी और बेटे का समान रूप से महत्व होता है। वर्तमान समाज में भेदभाव को मिटाकर बेटियों को महत्व देना चाहिए। बेटियां ही घर की संचालन शक्ति होती हैं। माँ, बहन एवं पत्नी के रूप में उनका सर्वांग जीवन त्याग एवं सेवा की लंबी गाथा है, उसका बहुत वर्णन है।
1: जी हाँ, एक नारी जो है बहन का, माँ का, पत्नी का, दादी का, सारे रिश्ते बखूबी और बहुत ही खूबसूरती से निभाती है। अब हरजीत जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आज की नारी है, नारी का वर्तमान जो स्वरूप है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
2: देखो, नारी समाज में भी सबसे आगे आई है। आज बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऊंचे ऊंचे पदों पर बेटियां विराजमान हैं। पुराने समय में लड़कियां बहुत समझी जाती थी, लेकिन आज का युग नारी युग है।
1: जी हाँ, मेरी राय भी यही है। मेरा मानना ये है कि जो वर्तमान की नारी है वो आर्थिक की दृष्टि से आजाद हो, शिक्षित हो, पुरुष की दास्तां से मुक्त हो, दोनों यानी कि एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हाँ जी,
2: देखो किरणी जी, हमारे समाज में जागरूकता आई है, भ्रूण हत्या अब कम हुई है, गवर्नमेंट ने भी कानून जो है बना दिए हैं, बहुत सख्त कानून बनाए हैं कि बेटियों को जन्म से पहले आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं, और रेशों में भी लड़कियां जो है वो लड़कों के बराबर हो गई है। अभी मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। बेटी बोझ नहीं सम्मान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है।
1: जी हाँ, इसीलिए हम सबको एक नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि नारी से ही जीवन है। जी, आपकी कविता से मुझे भी दो लाइनें याद आ गई। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। अब हम आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। आप बताओ आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
2: उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार कराते। किरण जी मुझे ये बहुत पसंद
1: है। चलो आपके पसंद का ये गाना हो जाए। जी हाँ, ये गाना बहुत अच्छा है और इसकी जो पहली दो लाइनें हैं जो कश्मीरी में है वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि बादशाह से खानो मजगूर दुमे रक्षत मैंने बजानो। अब सब सुनने वालों को और आपको हम ये वाला गाना सुनाते हैं।
2: वाह खूब।

0: बहुत ही मनमोहक गाना था, हमने और लिस्टनर्स ने सुना। आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आज के मौसम के हिसाब से आप कौन सी रेसिपी श्रोताओं को आज बताने वाले हैं?
1: आज मैं आपको फ्रूट क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ठंडा हम खाने को भी मन करता है और पौष्टिक भी है। आजकल किरणी जी बच्चे जो हैं वो फल फ्रूट कुछ चीजें नहीं खाते हैं, इसलिए उनको खिलाना पड़ता है। तो छोटी सी रेसिपी है, उसमें घर में फ्रूट पड़े रहते हैं, जैसे सेब अनार केला कोई भी आप ले सकते हो, उनको छोटे छोटे काट कर बाउल में डाल लो। घर की मलाई पड़ी होती है उसको फेंट लो, अगर नहीं है क्रीम ले आओ, उसमें शहद मिलाकर उनको मिक्स करके आप बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, ये व्रत में भी खा सकते हो आप।
0: जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रेसिपी और कम समय में बनने वाली, मैं भी आज ही ट्राई करूंगी। अब आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
1: तो क्यों ना वो लगाया जाए, अपने पुराने टाइम का गाना, ओ बाबुल प्यारे।
0: जी हाँ, आपके लिए और अपने श्रोताओं के लिए पेश है बाबुल प्यारे।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hamsafar Zindagi Ka.
1: आप कोई घरेलू नुस्खा बताए जो सबके लिए कारगर हो।
2: हाँ जी किरणी जी, आजकल बारिश का मौसम है, तो कुछ ऐसा बताया जाए कि स्किन के लिए, खुजली के लिए, जैसे नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिला के लगाएं कि उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा।
1: जी हाँ, हमारे श्रोताओं को कुछ तो इससे फायदा मिलेगा। मैं भी एक घरेलू नुस्खा आपके साथ और अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है हल्दी। हल्दी तो हर एक किचन में मिलती है। अगर शरीर के किसी हिस्से में चोट लगे तो गर्म दूध में हल्की फुल्की हल्दी डालकर पिए। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो मसल्स में आई सूजन में राहत दिलाती है। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। हमारे ये दोनों घरेलू नुस्खों से शायद हमारे श्रोताओं को कुछ हेल्प मिले।

0: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: प्रोग्राम के अंतिम हिस्से में अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप आज अंबाला कैंट के पहले FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आए हैं, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए।
2: हमें बहुत खुशी है कि अंबाला कैंट को अपना FM स्टेशन मिला है, जिसके माध्यम से हम सभी अंबाला वासी अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे और पहुंचा सकते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि दिन दुगनी रात चुगनी हो। मैं हमेशा FM सुनती रहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंबाला में मेरे घर के पास FM खुल जाएगा, कि जिसको मैं बड़े मन से सुनती हूँ। अब
1: हरजीत जी, अब हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। उम्मीद है श्रोताओं को आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अब लास्ट में आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
2: आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। हमारे श्रोतागण को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद जय भारत।
1: आइए, आपको हरजीत जी के पसंदीदा गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। इसको प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड एडिट एवं निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए रेडियो विदस्ता, सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
3: सीधी कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
2: रेडियो वितस्ता
3: असले पौन पटाके
2: सुन मेरे दिलदारा मेनू 90.0 मेगा

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: फिफ्टी, कुछ तेरे दिल में फिफ्टी, कुछ मेरे दिल में फिफ्टी, जमाना है बुरा।
1: नब्बे अशारिया सिफर एफएम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

मन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर दिखाओ।

हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी।

उन्होंने फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: रफ़ी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी। अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
1: कोई मुझे जंगली कहे कहने को जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 9। आज का विषय है दिल की बात। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन व प्रस्तुत किया आरजे किरने ने।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। स्वागत है आपका एक खास सफर में, जहां दिल की बातें करेंगे, दिल से दिल तक का सफर। लेकर आई हूं रेट्रो का एक और अंक, दिल की बात, जहां हम पुराने गीतों के जरिए उन यादों को फिर से जिंदा करेंगे जो कभी आपके दिल के कोने में छुपके से बस गए थे। दिल की बात दिल में छुपाया नहीं करते, वक्त बहुत कीमती है, इसे जाया नहीं करते। जाहिर कर दो जज्बात अपने दिले नादान के, मन की बात बोलने में वक्त लगाया नहीं करते।
2: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रू

खामखा ही परेशान हो जाएगा कोई भी शख्स, हर किसी को दास्ताने दिल सुनाया नहीं करते। ख्वाबों में तो तुम मेरी हो चुके हो पूरी तरह, फिर क्यों हकीकत में सामने आया नहीं करते।

ये लोग क्या समझेंगे मोहब्बत के वजूद को, क्योंकि लूटने वाले कभी इज्जत कमाया नहीं करते। इश्क में दर्द का भी एक अपना मजा होता है, यूं ही ये दर्द सबको दिखाया नहीं करते।

0: यादों की तिप्स में सुलगा है ये दिल मेरा, हम भी यूं बेवजह नाराज नहीं हुआ करते। तुझसे मोहब्बत मुझे पहले भी था, आज भी है, वरना हर रोज तेरी तस्वीर सीने से लगाया नहीं करते।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना।

सोचा आज उनसे अपने दिल की बात कर दूं, लेकिन दिल ने अपना इरादा बदल लिया। कहने को तो बहुत कुछ कहना है, हमने देखा तो उनकी निगाहों ने पर्दा कर लिया।

सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तभी जिंदगी से नहीं ये फिजाए, यहां सैकड़ों कारवां और भी है।

0: अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है।
1: पूछ

0: साथ बने।
1: दिल की धड़कन भी एक कहानी कहती है, हर धड़कन में छुपी कोई निशानी रहती है, कभी खामोश तो कभी शोर मचाती है, दिल तो बस प्यार का गीत सुनाती है।

0: दिल है।
1: दिल है छोटा सा पर इसमें गहराई है, हर धड़कन में छुपी एक परछाई है, कहना चाहे जो बातें मगर चुप सा है, दिल भी तो इंसान की तन्हाई है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 9। आज का विषय है दिल की बात। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन एवं प्रस्तुत किया RJ किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
2: उस पथ

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: नब्बे आशारिया सिफर एफएम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: देवानंद 35 रुपए लेकर गुरदासपुर से बॉम्बे फिल्मों के लिए भागे थे। कड़े संघर्ष के बाद उन्हें फिल्मों में अपनी राह मिली, एक्टिंग में, डायरेक्शन में, संगीत में। उन्होंने 65 सालों में नए नए तजुर्बे किए। एस टी बर्मन का संगीत, मजरू के गीत और पर्दे पर देवानंद। देवानंद की हर फिल्म का गीत संगीत परले दर्जे की समझ अपने आप में समेटे होता था। किशोर ने फिल्म जिद्दी में देवानंद के लिए पहली बार गाया। गीत के बोल थे, मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे,
1: गाता रहे
0: बस सारी जिंदगी। देवानंद और किशोर

दोस्ती निभाने की कला देवानंद और गुरुदत्त ने उदाहरण बन फिल्मी सनत को सौंपी। एक ने वायदा किया कि गुरुदत्त, अगर मैं फिल्मों में कामयाब रहा तो मेरी पहली फिल्म तुम डायरेक्ट करोगे, और अगर तुम सफल होगे तो अपनी फिल्म में हीरो मुझे ही बनाओगे।

फिल्म बाजी और सीआईडी में श्रेय और देवानंद एक स्टाइल बन गए। दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार, बलराज साहनी और देवानंद के एक्टिंग में अपने अपने स्टाइल थे, मगर इन सब में अगर स्टाइलाइज्ड कोई हीरो थे तो वो थे देवानंद। 60 और 65 के दशक में देवानंद एक नायाब छवि के हीरो थे। काला कोट, काली पेंट, सिर पर अपनी तरह का हैट, कलाई पर रुमाल, दाईं ओर से टूटा हुआ एक दांत स्टाइल बन गया था।

0: देव साहब को 1959 यानी 1959 में कालापानी के लिए और 1967 यानी 1967 में गाइड के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया।
1: देखो रूठाना करो।
0: इन 1991 में देवानंद को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। सन 2000 में फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े एजाज दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भारत सरकार ने उन्हें नवाजा।

सन 2011 में ये फनकार सिने दर्शकों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया, लेकिन फिल्मों के जरिए देवानंद को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा।

रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए। रेडियो वितस्ता।

0: रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।
1: दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपनी पहली फिल्म जवार बाटा के वक्त एक्टर यूसुफ खान को नाम बदलने की सलाह देते हुए 3 नाम सुझाए गए थे, जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार, जिनमें यूसुफ ने दिलीप कुमार का चुनाव किया जो हमेशा के लिए उनका हो गया। धर्मेंद्र ने अपना करियर 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू किया था, जिसके लिए उन्हें मेहनताना के तौर पर सिर्फ 51 रुपए और रोज नाश्ता मिला करता था, जिसमें चाय, 2 टोस्ट और मक्खन होता था, जबकि उन्हें जन्म देने की सख्त मनाही थी। अशोक कुमार ने 7 साल तक बॉम्बे टाकीज के साथ काम किया और उन्हें भारत की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म किस्मत दी थी, जो लगातार 3 साल तक थिएटरों में चली। राज कपूर ने दिलीप कुमार की पहली फिल्म जवार भाटा में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। बाद में राज कपूर ने फिल्म आग से बतौर हीरो डेब्यू किया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हीरो बनने से पहले सुनील दत्त रेडियो सिलोन में रेडियो अनाउंसर थे, जो हमेशा अपनी पसंदीदा अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू लेने का सपना देखा करते थे। करके जिसका इंतजार। एक बार इंटरव्यू लेने का मौका मिला, नरगिस को सामने देखकर उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका और इंटरव्यू रद्द करना पड़ा। बाद में मदर इंडिया में दोनों ने साथ काम किया, दोनों में प्यार हुआ और फिर उनकी शादी भी हुई।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते होंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। उन सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं और साथ में अपने सुझाव भी भेजते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 2 सेकंड। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी, और आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। सबसे पहले एक खास संदेश। श्रीमती साक्षी बान जी का जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। कल आपका शुभ जन्मदिन था, और इस खास मौके पर पूरा रेडियो वितस्ता परिवार और आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और अटूट खुशियों की कामना करता है। जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं। आपके जीवन के हर पल को खूबसूरत बनाने के लिए आपके अपने भी इस जश्न में शामिल है। आपके जीवन साथी दीपक बान जी, आपकी पूज्य माता जी श्रीमती रीता बान जी, और आपके नन्हे चिराग प्यारी बिटिया ट्विशा और बेटा कृषो, सबकी ओर से आपको दिल से एक बार फिर कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ पंक्तियां आपके लिए रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से। फूल खिलते रहे जीवन की राह में, खुशियां मिलती रहे हर एक चाह में, रेडियो वितस्ता और अपनों का प्यार रहे सदा, हर दिन लाए नई उमंग आपकी पूरी जिंदगी में। जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं एक बार फिर। दिन भर के नगमों के बाद अब समय हो है आज के इस सफर को यहीं थामने का, लेकिन विदा लेने से पहले आइए संक्षिप्त में जाने 25 अगस्त 2026 का धार्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व। पहला सावन का अंतिम मंगला गौरी व्रत। आज सुहाग और सुख समृद्धि के लिए माता पार्वती के पूजन का अंतिम मंगला गौरी व्रत मनाया गया। गैलीलियो की दूरबीन 1609। खगोल शास्त्री गैलीलियो ने पहली बार दुनिया के सामने दूरबीन का प्रदर्शन कर विज्ञान में नया इतिहास रचा था। वाइजर 1 2012। नासा का वाइजर 1 सौर मंडल पार कर इंटरलेटर स्पेस में पहुंचाने वाला पहला यान बना। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले मानव नील आर्मस्ट्रांग की आज पुण्यतिथि है। यह था आज का विषय और आज की जानकारी। अंत में कुछ पंक्तियां हर रोज की तरह आप सभी को समर्पित। पंक्तियां आज की यूं है, वितस्ता की लहरों संग बहता दिल का प्यार, रात की खामोशी में सुरों का ये उपहार। कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर दोस्तों, रेडियो वितस्ता लाएगा खुशियों की नई बहार। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 26 अगस्त 2026 हमारी सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। वंदे मातरम से हम शुरुआत करेंगे, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत, और 7:05 पर आप सुनेंगे सरगम एपिसोड 9। 8:30 सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 26, और 9:30 आप सुनेंगे मिले जुले गीत, शीर्षक होगा इंतजार, और 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रद्धांजलि पद्मश्री पुष्कर बान जी के ऊपर, जो रेडियो आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, अरेंजर हैं, रहे हैं। इनका जन्म 26 अगस्त 1926 को हुआ था। कल इनका 100वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष में 10 बजे एक स्पेशल फीचर प्रसारित करेंगे हम, और पुनः प्रसारित करेंगे 5:00। उनके परिवार से भी जुड़ेंगे और उस महान आत्मा को प्रेरणा स्रोत के बारे में नजदीक से जान सकेंगे। जरूर सुनिएगा कल 26 अगस्त को ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे और 5:00। संगीत की सभा जारी रहेगी, और कल बुधवार है, कल आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का पुनः प्रसारण, और 6:30 शाम में गजल, 7 बजे शक्ति का कार्यक्रम का एपिसोड 2 पेश करेंगे नैना, और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। और आप जरूर अपना फीडबैक हमें भेजिएगा
हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।